देवना विजय एम ए इंग्लिश, के महिला एम ए हिंदी, इतिश्रुति एम ए हिस्ट्री, अंजुमा एस मास्टर ऑफ सोशल वर्क, अनगा एल इंटीग्रेटेड एम ए इकोनॉमिक्स, एंड नितीश एम बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी।